0: ताकि मैं नाश्ता कर सका।
1: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ।
2: आओ अनंत साहिब करिए।
0: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
1: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया।
2: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
0: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन।
3: मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकता हाँ।
1: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीर हन।
2: ओ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन। आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
0: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन।
1: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी।
2: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहेगुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
0: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
1: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।